0: या ऑटो चलाते हैं उनको मराठी का एक्सपर्ट बनाने का कोई कारण नहीं है। उनको उनके काम जितनी मराठी आनी चाहिए, काम चलाओ मराठी आनी चाहिए, इस प्रकार का ही आग्रह किया गया है और उसमें कोई भी इस प्रकार की शक्ति नहीं है। उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है, अभी भी तीसरी बार भी समय बढ़ा कर दिया है और आगे भी अगर ये मांग आएगी कि हम सीखना चाहते हैं, हमको समय बढ़ा कर दिया जाए, तो समय बढ़ा कर दिया जाएगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी बीजेपी शिवसेना राष्ट्रवादी की महायुति सरकार भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी।
1: देखिए, मराठी भाषा बहुत अच्छी है, हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन भारत जो देश है ना, सेक्युलर देश है। हमारे भारत में मल्टी लिंग्वल मल्टी कल्चरल लोग रहते हैं, हर तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हर तरह के त्यौहार लोग मनाते हैं, संस्कृति रही है हमारी। अब बिहार यूपी के कुछ गरीब लोग बेचारे आते हैं मुंबई जैसी जगह पे, जिसको ड्रीम नगरी बोला जाता है, यहाँ पे इंसान आता है, व्यवसाय करता है, ऑटो चलाता है, टैक्सी चलाता है, बेचारा दो वक्त कमाता है, अपने बच्चों का पेट भरता है। आप बोलोगे उसको कि तू आया मराठी तू बोल, ऑटो वालों को टैक्सी वालों को रोज पकड़ पकड़ के 500 रुपए का नहीं 2000 रुपए का चालान काट रहे, उसकी कमाई 500 रुपए नहीं है, आप 2000 का चालान काट रहे हो, आप लाइसेंस कैंसिल कर रहे हो।
2: हम लोग 60 साल 55 साल के आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखे हैं, तो हम लोग कहाँ से तौते
3: मराठी बोले
4: पाएंगे। हम लोग पढ़े हुए हम लोग
2: जो भी आ रहा है टूटी फूटी हम लोग बोल भी रहे हैं, तो लोग उसके भी कार्रवाई करने के लिए एकदम पूरा फाइन मार रहे हैं, 15,000-20,000 हम लोग की औकात है 15,000-20,000-25,000 फाइन मारने के लिए।
5: 3 दिन के लिए ऑटो रिक्शा स्ट्राइक बंद है और मराठी बोलने के उपलक्ष्य में बंद रहेगा 2-3 दिन। हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 80 साल 60 साल पुराने लोग को मराठी बोलने के लिए बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, इसलिए हम लोग को न्याय चाहिए थोड़ा बहुत।
6: And with that, we're slipping into a very short break. Back with a whole lot more on the other side, including Iran saying they're ready to retaliate after the US has imposed sanctions on Iran. That and a lot more soon.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: एवढे हजार कोटी रुपये जे शासन वेगवेगळ्या विकासांच्या कामासाठी खर्च करतं त्याच्याविषयी मला कुठलाही आक्षेप नाही. पण जर ह्या हजारो कोटीच्या रकमेत जर साधन तरतूद करत असेल तर या रकमेपैकी मी असं म्हणालो की 0.1% 32 कोटी रुपये जर सरकारने खर्च केले तर या राज्यातल्या 100-125 शाळा मराठी शाळा ज्या बंद पडल्या त्या बंद पडल्या.
1: राज्य में बहुत सारे समस्या है, प्रॉब्लम है, शिक्षा की समस्या है, बहुत सारे स्कूल बंद पड़े हैं, स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो पीने की पानी की व्यवस्था है नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है तो शौचालय भी नहीं है, जाने के लिए ठीक से रास्ता भी नहीं है. हम बोलते थे कि कुंभ मेला की इतनी खर्चे के इतने पैसे की इतना उधल पट्टी की क्या जरूरत है तो हमें हिंदू विरोधी कहा जाता था. हमने कुंभ मेला को विरोध नहीं किया, वो कुंभ मेला करो आप पर 35,000 करोड़ रुपए क्यों खर्चा करते हो ये हमारा कहना था. सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जज ने श्री प्रसन्ना जी वराड़े जी ने आज वही कहा कि कुंभ मेला में 35,000 करोड़ रुपए खर्चा करने के लिए आपके पास है और 3,000 रुपए खर्चा शिक्षा पे खर्चा करने के लिए आपके पास में पैसे नहीं है.
2: सुप्रीम कोर्ट के जज है उन्होंने कहा कि आप कुंभ मेले के अंदर 34,000 करोड़ रुपया जो खर्चा कर रहे हो कॉरिडोर का उसका अगर 1% भी आप एजुकेशन के ऊपर खर्चा करते तो काफी सारी स्कूलें बच जाती. उन्होंने मराठी स्कूलों का जिक्र किया, मैं कहूंगा उर्दू माध्यम की जो स्कूलें उनको भी बंद किया जा रहा है काफी जगहों के ऊपर तो वो भी बच जाती. तो इतने बड़े न्यायाधीश ने कहा अगर कहा है तो बहुत बड़ी बात है.
3: Let's get you more news coming in, and this is the fight for the real TMC that's basically reached the Supreme Court. We have Mamata Banerjee's party challenging the alleged delay by the Lok Sabha Speaker in deciding the disqualification pleas. This is against the 20 rebel MPs. The rebels have claimed a merger with the NCPI, but TMC's core argument is that 2/3 MPs switching sides alone does not really amount to a valid merger. The party says the original political party must itself merge, citing the Supreme Court's judgment of 2023 on the distinction between the ordinary party and its legislative wing. Abhishek Banerjee has, of course, sought a decision. This is a decision with the Supreme Court that's scheduled to hear the plea that's coming up in court today.
4: So, Supreme Court is ka tay karenge agar wo desh ke sarvoch nyayalay mein gaye hai to. Lekin Abhishek Banerjee ka abhi dil ka halat aisa hai. वो मन में शायद ये गाना गुनगुना रहे हैं कि अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं. ये नहीं जाने देना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो सांसद है जिनके खिलाफ उनके पार्टी के कुछ लोग कुछ दिन तक इतना बुरा भला कहे हैं, उनका उनको गिरगिट कहा है, उनको दल बदलू बहुत कुछ कहा है, तो ये तब याद नहीं रहा. अभी इनको बहुत याद आ रहा है क्योंकि सांसद में जो संसद सदन में ये सांसद नहीं रहेंगे तो शायद उनका कहीं ना जाके तृणमूल का जो गरिमा है वो कम हो जाएगी.
3: Let's just also get you the showdown that has erupted over the comments that have been made by the leader of opposition, Rahul Gandhi. Smash patriarchy call that continues to escalate. We have the Chief Minister of Assam, Hemanta Biswa Sarma, who is the latest in hitting out at Rahul Gandhi, calling him a Hindu baiter and proclaiming he is no champion for women's rights. Taking to social media platform X, he's gone ahead and contended and asked how many times has Rahul Gandhi spoken with the same outrage against patriarchal and medieval practices that persists under Sharia law. Meanwhile, replying to earlier criticism by the minister, this is the Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis, Rahul Gandhi has written a letter to him on the issue of protesting Adivasi students. In the letter, Rahul Gandhi has claimed that women are being humiliated in the state of Maharashtra due to restrictions in hostels and that the Chief Minister must meet with these students. We have more news coming in, and this is in regard to, in fact, the RSS Chief Mohan Bhagwat, who's all set to visit the United States, Canada and the United Kingdom as part of the 100-year celebration, the global outreach program of the RSS. He's expected to arrive in New York City today. He will be participating in the Universal One

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर JK टायर।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है?
2: अरे मेरे राजा।

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
2: A world of questions.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
2: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to rupees 300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way.
4: Hindustan mile, Hindustan se.
5: Desh ka tire, JK tire.
6: Jante hain? मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज़ मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: A world of questions, ideas that challenge the ordinary, conversations.

0: Rejects UP students' petition challenging restrictions on wearing the hijab.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: अ वर्ल्ड ऑफ क्वेश्चंस, ideas that challenge the ordinary, conversations that connect countries and cultures, where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: Remains at the center of discussions with LAC and border stability, de-escalation and avoiding friction are among the key issues. The talks come after years of tensions following the 2020 Galwan clash, with the two sides continuing efforts to stabilize ties. Arunachal Pradesh remains another flashpoint, with India maintaining it is an integral part of the country, while China claims the region as South Tibet. With the naming of places in Arunachal, reports of military activity near the LAC and border management also in focus, Tuval's talks with Wang Yi come at a crucial point for India-China ties.
1: The India-China border talks are very important, and it is now the 25th round, and it is important that these are held regularly. And so NSA Shri Abhijit Doval has gone to Beijing for the next round of talks. But I think that one of the most important reasons of the visit and the timing is because of the preparation for the BRICS summit.
2: देखिए डोवल साहब गए हैं एनएसए साहब चाइना वो वहाँ वैंग जी जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात करेंगे क्योंकि कुछ दिनों में अगले महीने उसकी मीटिंग होने वाली है क्या ब्रिक्स की समिट होनी है जिसमें चाइना के और रशिया के राष्ट्रपति भी एक्सपेक्टेड हैं वो आएंगे पुतिन और जी तो जी जिनपिंग तो उससे पहले कोशिश ये है क्योंकि बाउंड्री डिस्प्यूट ही भारत और चाइना के बीच में एक मुद्दा बना रहता है टेंशन का अगर उसको उस पर कोई समझौता हो सके कुछ रिजर्व क्योंकि वो अनडिमार्केटेड बाउंड्री है
3: पिछले साल अक्टूबर में कजान के अंदर जब हमारे दोनों देशों के प्रमुख मिले थे तो उस दौरान में हो गई थी और अभी अचानक से वांग ली जो आए थे चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है जिन्होंने दिल्ली विजिट किया तो उनकी मुलाकात हमारे एनएसए अजीत डोभाल साहब से भी हुई थी और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी उनसे भी हुई थी कहने को तो कहा गया था कि ये एंटी टेरर और ब्रिक्स के बारे में मीटिंग हो रही है बट मेरा मानना है ये मीटिंग के मायने कुछ और ही है
0: All right, now a statement coming from Beijing where it said National Security Advisor Ajit Doval has held special representative talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi on the India-China

0: The Chief Minister's residents demanding changes in the exam patterns he's implemented.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात.
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
1: अरे मेरे राजा.

0: Welcome back. Now, a heartbreaking story from Delhi. A 15-year-old boy, Mithun, who fell into an open drain 4 days ago. His body has now been recovered. This was in South Delhi in Jasola. This was Jasola village, in fact. His body has been recovered after 4 days of searching. And just take a look at those visuals. That is a visual of the boy's father, Mithun's father, who in desperation went himself into the drain and is searched. And, you know, he's just taking away the garbage, looking for his son's body there. This was on the 21st of August that Mithun went missing while he was chasing a kite, and he is suspected to have fallen into a drain near his home. It was an open drain, and that really is one of the big issues that Delhi is facing, and there's been many complaints, in fact, many of our urban centres. A multi-agency operation involving the Delhi Fire Service, NDRF, rescue teams and divers was then launched to trace him, and then this video has gone viral of the distraught father searching for his son's body, entering the drain himself. Following this incident, the MCD has been suspended a junior engineer from the Southeast Central Zone for allegedly dereliction of duty, with disciplinary proceedings now underway. But that means nothing for this father and this family.
1: Right now, I'm standing on a spot. This is an accident-prone spot where on Saturday at around 11 a.m., a boy who has been identified as Mithun, he was sitting over here when he fell into this open drain. And what we have got to learn from the locals that this is not the first time that such incident has taken place. Earlier, several incidents have taken place at this very blind spot. I'm going to speak to a local over here. Achha, mujhe bataiye, ye takriban Saturday 11 baje ki ghatna hai. Kya kuch hota hai us waqt?
2: देखिए, सुबह 11 बजे जो लड़के के फादर मिथुन के हैं, अवधेश नाम है उनका, वो एक प्राइवेट सफाई कर्मचारी हैं, उनको एक कॉल जाता है कि आपका बच्चा परिवार पीछे खड़ा था, घर के पीछे खड़ा था, वो पानी में गिर जाता है, नाले में गिर जाता है। वो अपने और रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं जो आसपास रहते हैं, वो जाकर आते हैं और वो सीधा 100 नंबर पर कॉल करते हैं। 100 नंबर से सहिता विहार थाना लगता है यहाँ का। 100 नंबर जो यहाँ पर SHO साहब टीम भेजते हैं, वो यहाँ पर आकर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं हुई है। वो प्राइवेट गोताखोरों को कॉल करते हैं, प्राइवेट गोताखोर आते हैं यहाँ पर और आन के एक बहाना देते हैं कि चलता तेज़ पानी है, हम इसमें नहीं उतर सकते।
1: जिला प्रशासन के साथ साथ NDRF की जो टीम यहाँ पर पहुँचती है, कितने देर बाद पहुँचती है?
2: NDRF की टीम शाम में 6 बजे आती है। वो ये कहती
1: कह रहे हैं कि 11 बजे की घटना है, शाम में 6 बजे, 7 घंटे डीले से दिल्ली शहर के बीचों बीच NDRF की टीम पहुँचती है।
2: 6 बजे वो आती है और आने के बाद रस्सी बांधकर 10-15 मिनट नाले में डंडे चलाती है और कहती है कि पानी तेज़ है, गंदा है, नीचे इसमें दल टाइप के, हम नहीं उतर सकते।
0: All right, a heartbreaking story there from Delhi. Now, news from Nashik, and the Nashik Kumbh Mela spending has triggered a debate over the government's priorities after the Supreme Court judge has questioned the allocation of thousands of crores for the event. Justice Prasanna B. Varale pointed out that the government is planning to spend around 32 to 34,000 crore rupees on this Kumbh Mela, while highlighting the closure of Marathi medium schools in Maharashtra. The remarks have now been welcomed by the opposition. Opposition leaders said that Maharashtra continues to face so many serious problems when it comes to education, including a lack of teachers, school buildings, toilets, drinking water and proper access roads. Meanwhile, the BJP's hit back at the opposition and said the Congress leaders are anti-Sanatanis and they are not liking the Kumbh in Nashik.
3: खूप सकाळी निधी वेगवेगळ्या कामांसाठी देऊ, कुंभमेळ्यासाठी 32,000, उपमुख्यमंत्री म्हणाले 34,000 कोटी देऊ, नंतर कुठेतरी बातमी वाचली की एका कॉरिडॉरसाठी आम्ही 11,000 कोटी रुपये खर्च करू, एवढे 1,000 कोटी रुपये जे शासन वेगवेगळ्या विकासांच्या कामासाठी खर्च करतं, त्याच्याविषयी मला कुठलाही आक्षेप नाही। पण जर ह्या 1,000 कोटीच्या रकमेचे जर साधन तरतूद करत असेल, तर या रकमेपैकी मी असं म्हणालो की 0.1% 32 कोटी रुपये जर सरकारने खर्च केले, तर या राज्यातल्या 100-125 शाळा, मराठी शाळा ज्या बंद पडल्या, क्या बंद पड़ जाएगा।
4: राज्य में बहुत सारे समस्याएं प्रॉब्लम है, शिक्षा की समस्या है, बहुत सारे स्कूल बंद पड़े हैं, स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो पीने की पानी की व्यवस्था है नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है तो शौचालय भी नहीं है, जाने के लिए ठीक से रास्ता भी नहीं है। हम बोलते थे कि कुंभ मेला की इतनी खर्चे के इतने पैसे की इतना उधल पट्टी की क्या जरूरत है, तो हमें हिंदू विरोधी कहा जाता था। हमने कुंभ मेला को विरोध नहीं किया, वो कुंभ मेला करो आप, पर 35,000 करोड़ रुपए क्यों खर्चा करते हो, यह हमारा कहना था। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जज ने श्री प्रसन्ना जी वराड़े जी ने आज वही कहा कि कुंभ मेला में 35,000 करोड़ रुपए खर्चा करने के लिए आपके पास है और 3,000 रुपए खर्चा शिक्षा पे खर्चा करने के लिए आपके पास में पैसे नहीं है।
5: सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने कहा कि आप कुंभ मेले के अंदर 34,000 करोड़ रुपया जो खर्चा कर रहे हो कॉरिडोर का, उसका अगर 1% भी आप एजुकेशन के ऊपर खर्चा करते तो काफी सारी स्कूलें बच जाती। उन्होंने मराठी स्कूलों का जिक्र किया, मैं कहूंगा उर्दू माध्यम की जो स्कूल है उनको भी बंद किया जा रहा है काफी जगहों के ऊपर, तो वो भी बच जाती। तो इतने बड़े न्यायाधीश ने कहा, अगर कहा है तो बहुत बड़ी बात है।
6: महाराष्ट्र की भूमि पर देवाभव के नेतृत्व में एजुकेशन पर हम पहले की सरकार से 5 गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं और हमारी मंशा है कि और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पे हम खर्च कर सकें। पर महाकुंभ के इस महान पर्व पर श्रद्धा और आस्था का वहां पर सैलाब उमड़ेगा, लाखों करोड़ों लोग आएंगे, वहां पर सड़कों का निर्माण हो रहा है, डेवलपमेंट के इंफ्रा के काम हो रहे हैं। सारे कांग्रेस नेता कान खोल करके ध्यान से सुने, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर महाकुंभ होगा और यदि इसे कोई विरोध करता है तो आने वाले चुनाव में जनेऊ पहनने का कांग्रेस का नाटक या हिंदू मंदिरों में जाने की नौटंकी सनातन हिंदू भाई नहीं सहन करेगा।
0: Alright, so Supreme Court judge there questions the Nashik Kumbh spending. 34,000 crores is going to be spent on the Kumbh Mela. Well, shifting focus now to an incident in Karnataka. A row has erupted over VIP behavior at a temple in Mandya in Karnataka. This is after the daughter of a BJP MLA visited this temple. Now, you can see that video on your screens there. This is from 12th of August, which shows the BJP MLA Suresh Gowda's daughter and a police officer. Now, in the CCTV video, the BJP MLA's daughter named Aishwarya can be seen slapping the cop who was on duty at this temple. The officer then appears to hit her back. The clash allegedly followed a dispute over entering the temple sanctum sanctorum. The police officer has now filed a complaint against the MLA's daughter, while the incident has sparked a political row over alleged VIP treatment and behavior. Of course, the BJP has backed the MLA, saying he and his family have now apologized over this incident.
7: See, they have apologized for that incident, but having said that, I would like to tell you that the inquiry is going on. Anybody taking law into their hands, or if an officer who is supposed to do his duty, if somebody obstructs in the line of his duty, definitely action will be taken. So there is no question of going soft or going, you know, ignoring anybody's excesses. So definitely action will be taken.
8: Already our MLA has apologized and his family has apologized and love the land. Anyway, whatever process is happening, it is happening. I don't see much more than this. No, it has happened and whatever due process has to happen, it will happen.
0: All right, with that, time for us to slip into a short break. More news and updates on the other side. Stay with us.
9: Capital. Innovation. Leadership. The three forces shaping India's next business powerhouse. From scaling capital to unlocking the power of AI. From bold ideas to transformational leadership, Mumbai brings together the people building India Inc.'s future. Join policymakers, industry titans, visionary founders at the NDTV Emerging Business Conclave, Mumbai Chapter. A world of questions, Ideas that challenge the ordinary. Conversations that connect countries and cultures. Where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders. The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal. He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: or an investment from outside should come in. And while he was doing that, the city that gives Haryana its maximum revenue was absolutely flooded. So no matter what kind of PR machinery you employ, the reality, ladies and gentlemen, is for all of us to see, and for all of us to see not only in 2026, but it has been going on and on and on and on as a malaise, as a disease, which no antibiotic has cure for.
1: Yes, Gurgaon, we've been, every season we see Gurgaon actually sinks, and people are stranded in their houses, in their offices. It's a pity to see a millennial city go down the drain like this, literally. But see what's happening around Ames today because of the last night's rain. This is a shocker. All the infrastructure built by previous governments, all that you need to do is maintain it properly. All that you need to do is do the annual cleaning of drains properly, fix the drainage system properly, whether it's in Gurgaon, whether it's in Delhi.
2: देखिए, जैसे अगर आप मेरी विभाग के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक अलग डिपार्टमेंट है उसके लिए, तो उसके लिए भी मैं देखती हूँ कि सीएम साहब और सारे की सारे मीटिंग्स लेते रहते हैं, और क्योंकि लंबा टाइम की बात है तो इसमें सारी की सारी जो इसकी सॉल्यूशंस भी निकालने में टाइम लगेगा. मैं अपने विभाग के बारे में भी जैसे आपको बताऊं, इरिगेशन डिपार्टमेंट का इतना लंबे टाइम से काम नहीं हुआ है, इतना झड़झड़ हालत पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई है कि अब उसको एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत बहुत हद तक उसका पूरा नवनीकरण होगा. तो ये सारी की सारी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो विजन है, और ये इस मामले में स्टॉक लिया है कि किस तरीके से पूरा की पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर हमको इरिगेशन डिपार्टमेंट को कैसे सुधारना है.
0: Someone needs to remind the minister that the government has, of BJP has been there for the last three consecutive terms. And this is the result of the vision that we are seeing. I just want to very quickly, ladies and gentlemen, give you a sense of the raw deal that people from Gurugram get. I mean, change the name from Gurgaon to Gurugram, but that doesn't change anything as far as infrastructure is concerned. Only if changing the name was enough. 35,000 crore, 3,500 crore rupees is what the Gurugram civic body budget for year 2026-27 is. 500 crore rupees are spent in 9 years for cleaning and building drains, at least on paper. 500 crore rupees approximately has been spent every single year to try and get more drains and better drainage system as far as the Millennium City is concerned. But it has come to nothing. Now imagine this. 55 crore rupees every single year. What do the taxpayer in Gurugram are getting? The taxpayer in Gurugram pay one of the highest, in fact, tax, whether it is property tax or anything else. 40,000 crore rupees is the estimated direct tax that is collected from Gurugram. 40,000 crore rupees for Haryana. 26,000 crore rupees estimated GST contribution in the state of Haryana. 12 lakh is the population of the city. 5.5 lakh per person approximately is the tax that any person living in Gurugram in fact gives or is generated directly as far as people are concerned by this business operating city. What do they get in return? They get in return their children stuck while they are trying to come back, their fancy car stuck in water, traffic jams, and absolutely nothing as far as the infrastructure is concerned. Taxpayers in Gurugram pay the maximum, about 40,000 crore rupees, and it is drowned every single year. This is what they get in return, ladies and gentlemen. It gives you a sense of how the government has absolutely failed in providing even the basic minimal that this so-called millennial city should have. I want to just play out these visuals before I go to my guest on this. This is Invest Haryana, Happening Haryana event, which is taking place. The chief minister is sitting there with bunch of businessmen, bureaucrats who are telling the world that Haryana has everything that you need to invest. And take a look at on the picture on the other side. This is the model city, the showcase city of Haryana, absolutely flooded in just 1 hour spell of rain. Dharambir Singh ji is joining me at this moment. He is Bharatiya Janata Party's Lok Sabha MP from Bhiwani Mahendragarh. Dharambir ji, bahut bahut shukriya sir, samay nikalne ke liye aur humse baat karne ke liye. Sabse pehle aapne bhi dekha hoga sir, aapke rajya mein Gurugram, jisko ek model shahar ki tarah, millennium city ki tarah baat ki jati hai, ek ghante ki barish sir aur trahimam ho gaya hai Gurugram mein. जहां पर 8 साल पहले भी पानी भरी हुई तस्वीरें आती थी, उस जगह पर आज भी वहीं पर वैसे ही स्कूल बसें फंस रही हैं।
3: ठीक है, आप क्या मैं बोलूं कि आपकी बात का जवाब दे सकता हूं?
0: जी सर, बिल्कुल।
3: मेरी आवाज आ रही है?
0: सुन पा रहे हैं सर।
3: क्या मेरी आवाज है आपके पास?
0: सुन पा रहे हैं सर, प्लीज बताइए।
3: सुनाई दे रही है क्या मेरी आवाज आपको?
0: सर बिल्कुल ठीक
3: ठाक मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको?
0: बिल्कुल आपकी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है और जनता भी ये सुनना चाहती है कि सरकार जो डबल ट्रिपल इंजन की बात करती है वो गुरुग्राम के लिए कर क्या रही है।
3: देखिए, हमने पीछे के इतिहास में जाना पड़ेगा। हरियाणा एक नया प्रदेश है। आज से 50-60 साल पहले ये केवल गुरुग्राम गांव था और धीरे धीरे हम दिल्ली के नजदीक होने की वजह से गुरुग्राम एक बहुत बड़ा शहर के तौर पर डेवलप हुआ। हमारा जो योजनाएं बननी चाहिए थी वो योजनाएं हम नहीं बना पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर रोड की चौड़ाई हो, पानी की निकासी हो, पब्लिक सेक्टर की कोई चीज बनानी हो, यूटिलिटी के लिए कोई जगह बनानी हो, हम इस पानी को उठा के जमुना में डालने की बात हो, धीरे धीरे जो योजना बननी चाहिए थी वो योजना आज से नहीं, पिछले 50 साल के इतिहास में देखोगे तो एक गाँव के लिए योजनाएं बनी थी, छोटे शहर के लिए बनी थी। आज सबसे बड़ा शहर बन चुका है, बहुत बड़ा शहर। इसलिए आपको नजर आता है जैसे ही बारिश आएगी अब जमीन पानी पीती नहीं। हमने जमीन को भी ऐसा जहरीला बना दिया कि थोड़ी बारिश का पानी भी ऊपर आ जाएगा। बची हुई जमीन में हमने सीमेंट कंक्रीट के रोड बना दिए, छत पक्की बना दी। आज की सरकार पिछले 12 साल से इसी कोशिश में है कि जो बारिश का पानी है उसको हमने जमीन में कैसे छोड़ना है। हम जब भविष्य में किसी को परमिशन देते हैं टाउनशिप के लिए मकान बनाने के लिए, तो उसको क्या तरीका अपनाना चाहिए। पुराने रोडों को आज हम ये मानने के वो 30 मीटर का, उसको हम 100 मीटर का कर देंगे, आज संभव नहीं हो सकता। यही क्वेश्चन आपकी चेन्नई में है, बंबई में है, आप किसी शहर में जाके देखिए। हम अकेले सफरर नहीं है, मौसम का परिवर्तन भी ऐसा है कि कभी बारिश बहुत लंबे टाइम पर होती थी, आज तो एक घंटे में इतना पानी पड़ जाता है कि उसका निकासी नहीं हो पाती।
0: तो सर सारी गलती
3: ऐसे हालात में
0: सारी गलती मौसम की है। सरकार आप कह रहे 12 सालों से सरकार 12 सालों से चलिए मैं आपकी बात समझ गया। आप मुझे ये बताइए कि पिछले 12 सालों में 3 ऐसी बड़ी योजनाएं जो गुरुग्राम की नालियों को, ड्रेनेज को ठीक करने के लिए सरकार ने की हो, 3 बड़ी योजना।
3: आज के दिन बहुत बड़े पानी, जो भी ऊपर का पानी था नए गुड़गांव का, उसको निकासी के लिए हमने उसी को पानी का नाले में डालने के लिए कंप्लीट काम चालू कर दिया। कंप्लीट
0: कब किया?
3: ठीक है कि वो जो नदी नाले, पुराने नाले थे हमारे, जिनको पहले ही आज से 20 साल पहले एनक्रोच कर दिया गया, छोटे नाले बना दिए गए, उन नालों को आज के हम उसी जगह पर चौड़ा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही।
0: सर 12 साल की सरकार को निकाल पा रही है तो अभी आप बोलेंगे कि हमसे पहले वाली सरकार, हर साल आप इस चुनाव इसी बात पे,
3: पहले वाली हमारी सरकार थी, मैं ये नहीं कहता
0: हम विकास करने वाले हैं, हम चीजों को बदल देंगे, ये समस्या है जो आपको इस साल नहीं होंगी।
3: मैं ये दोष पिछली सरकार को नहीं दे रहा, पिछली सरकार भी हमारी सरकार ही थी, हम भी उसी में थे, लेकिन हमने ये योजना नहीं बनाई कि आने वाले टाइम पर इतना व्हीकल हो जाएगा, इतने रेजिडेंस बन जाएंगे, ये अंदाजा ही नहीं था किसी का।
0: तो सरकार की विफलता है, आप ये मानते हैं इस बात को?
3: जी
0: सरकार की विफलता मानते हैं आप इस बात को?
3: किस चीज को?
0: गुरुग्राम में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं वो सरकार की विफलता है?
3: नहीं नहीं, सरकार की विफलता नहीं है। मैं कहता हूं आज से 60 साल पहले हमें नहीं पता था कि इतनी ज्यादा आबादी गुड़गांव में आ जाएगी। उस वक्त हमें जो योजना बनानी चाहिए थी वो योजना आज से 60 साल पहले की उस सोच के हिसाब से नहीं।
0: 60 साल पहले क्यों, आजादी के टाइम में ही ऐसी योजना बना देनी चाहिए थी सोचकर? समस्या अगर अभी आ रही है, सरकार अब यही कहती रहेगी 60 साल पहले की बात करती रहेगी, तो फिर किस बात की सरकार, किस बात की आप लोगों की तैयारी है?
3: हमारा नया मास्टर प्लान है, दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, गुड़गांव का हो, नए जो शहर बसाने हैं उनका मास्टर प्लान आप देखिए। इसलिए बाहर का इन्वेस्टर हमारे यहाँ आएगा, आएगा 100% आएगा। पुराना गुड़गांव अगर हम देखे तो इसको सारे को तोड़कर हम दोबारा नया कैसे बना देंगे?
0: तो आप ये
3: संभव है?
0: कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अगर कोई सोल्यूशन

0: नहीं है, अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो फिर सरकार को आके कह देना चाहिए हम विफल है, हम अपने हाथ खड़े कर रहे हैं, प्राइवेट
1: क्यों, कौन कहता विफल है, जितना हमारे से हो सकता है उससे ज्यादा हम कोशिश करते हैं कि पानी की निकासी हो, ट्रैफिक जाम ना हो, उसके लिए सरकार जिला प्रशासन
0: तो आप बना करिए ना लोगों को, फिर नई बिल्डिंग्स को नई गाड़ियों को गुरुग्राम में आने की इजाजत क्यों दी जा रही है, मना कर दीजिए गुड़गांव के अंदर कोई नया घर नहीं बनेगा, अगर सरकार
1: कई बार दिल्ली में जब ऐसे हालात होते तो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गुड़गांव एनसीआर में बिल्कुल ब्रेक लगा देती है कि आप इन गाड़ियों को बंद कर दीजिए, ये हर आदमी को पता है, लेकिन आप क्यों
0: जी, एक तो बड़ी सादी सी बात है ना, अगर लोग टैक्स देते हैं अपनी गाड़ी कमाई से सरकार को टैक्स देते हैं तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम उन्हें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, अगर हरियाणा के नंबर एक शहर में ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा तो सरकार को किस बात का टैक्स दिया जा रहा है।
1: इसीलिए नीति आयोग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने मास्टर प्लान इसीलिए बनाए हैं, नई योजना इसलिए बनाई है कि योजनाबद्ध तरीके से गांव और शहर की बसासत होगी और हम पुराने सिस्टम को ठीक करेंगे योजनाबद्ध तरीके से, अगर हम केवल केवल लीपापोती करेंगे तो बात नहीं बन पा रही।
0: लीपापोती नहीं तो फिर बता दीजिए आज की कितने साल लगेंगे, आपकी सरकार तीसरी बार बीजेपी की सरकार है वहां पर, उसके बाद अभी और कितनी बार बीजेपी की सरकार वहां पर बनेगी कि गुड़गांव के लोगों को ठीक ठाक पानी सड़कें जो हैं वो बिना ठीक ठाक
1: वचनबद्ध है 2047 तक ये देश सारा विकसित देश होगा, हरियाणा सबसे पहले विकसित होगा जिसमें गुड़गांव शामिल है।
0: 2047 तक हो जाएगा सर?
1: हाँ 2047 तक आप देखना हमारा गुड़गांव भारत क्या होगा,
0: तो 2047 तक हो जाएगा, यानी कि गुड़गांव के लोगों को आराम से अभी 21 साल और बीजेपी को वोट देके आराम करना चाहिए कि 2047 तक कर ही देंगे आप,
1: और क्या मिली जो नहीं सरकार देना चाहेगा देश,
0: तो
1: देश चाहता है कि सरकार,
0: अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो फिर किसी और के पास जाना पड़ेगा, अगर आप लोगों को कह रहे हैं 21 साल का इंतजार करो 2047 में आपको सड़कें ठीक देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा सर,
1: देश तेजी से बदल रहा है जिस जो देश 12 साल पहले था आज वो देश नहीं है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर इस 12 साल में रेल का, सड़क का, निकासी का, पानी का, बिजली का बहुत बदलाव आया,
0: बिल्कुल बदलाव आया, आप ठीक कह रहे हैं 12 साल पुराने वाला देश नहीं है, लेकिन गुरुग्राम हो गया 12 साल में, पहले भी पानी भरता आ रहा है अभी भी पानी भरता आ रहा है, आप जनता को गुरुग्राम 2047 तक इंतजार करो तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक सेकेंड जरा आपसे एक सवाल और लेना चाहूंगा,
1: गांव था ये पहले एक छोटा गांव था पंचायत, ये पहले गांव था, गांव से बढ़ते बढ़ते इतना तेजी से हमारा जो शहर डेवलप हुआ है, ये प्रदेश की जनता केंद्र और प्रदेश की सरकारों की सभी का मिला जुला सहयोग की वजह से आज हम यहां तक पहुंचे,
0: हम सहयोग
1: सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है,
0: सहयोग से पहुंचे कि हमारे बच्चे पानी में फंसे रहे,
1: नहीं कोई नहीं चाहता, हम हमारे भी बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं, नाते नातियां हैं, हम भी चाहते हैं कि सुधार हो जल्दी हो,
0: तो कब तक हो जाएगा सर, अपने पोते पोतियों को आप क्या क्या उनको वादा देंगे कि कब तक कर देंगे दादाजी ठीक सब कुछ?
1: देखिए अकेला मैं नहीं कह रहा, मैं कहता हूं सारा सिस्टम व्यवस्था को सुधारने के लिए पुरजोर कोशिश है कि ये व्यवस्था सुधरे।
0: सर 12 साल सर लोग हरियाणा के आपको दे चुके हैं, पता नहीं और कितने साल देने होंगे व्यवस्था को सुधारने के लिए। मैं जाने से पहले आपको एक सवाल और पूछना चाहूंगा, हरियाणा में आज गुरमीत राम रहीम है, आप जानते होंगे उनको, 17वीं बार उनको पैरोल पर आज फिर से छोड़ दिया गया है। हरियाणा वो प्रदेश है जहां पर जो अगर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की बात करें तो उसमें हरियाणा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा तो है नहीं, मेरे पास सारा डेटा है क्या रेप के केसेस हैं, एक रेप कॉन्विक्ट को कैसे इतनी आसानी से 450 दिन से ज्यादा जब से उन्हें सजा हुई है वो आराम से बाहर निकल जाते हैं, आपको नहीं लगता कि सरकार को कहीं ना कहीं इस पर सोचना होगा, सरकार के बिना हामी भरे गुरमीत राम रहीम इतनी आसानी से तो निकल नहीं सकते,
1: क्योंकि हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम और जेल मैनुअल कोई आज का नहीं है, जेल मैनुअल जो बढ़िया है उसी के मुताबिक ही ये फरलो ले लेते हैं, ये सही बात है कि आने वाले टाइम में इसमें क्या बदलाव देश चाहता है वो तो सारा देश करेगा तभी होगा, लेकिन आज के दिन क्योंकि जेल मैनुअल ये इजाजत देता है फरलो,
0: सिर्फ जेल मैनुअल इजाजत देता है जब होम मिनिस्ट्री जो सरकार की होती है वो भी उसमें हामी भरती है, तो आपकी सरकार क्यों उसको इतनी आसानी से हामी भर देती है?
1: देखो हम कानून से ऊपर तो नहीं है, एक सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी एक अलग चीज है, जुडिश कानून से ऊपर आप और हम नहीं जा सकते, कानून में ये प्रावधान है तो इसमें हम क्या कर पाएंगे,
0: कानून में प्रावधान ये भी कहता है कि कम से कम अपनी डिसेंट तो रखिए, कम से कम ये तो कहिए कि ये व्यक्ति बाहर आने लायक नहीं है,
1: आपकी बात को हमने सुन दिया, आपकी बात को भी हम ऊपर तक पहुंचाए,
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बात ऊपर तक पहुंचाएंगे और पता नहीं जब तक बात पहुंचेगी, टिल द टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन लेट मी टेल यू वन थिंग एंड दिस इज वेयर आई वॉज कमिंग टू।

0: 1,787 cases of rape were registered in Haryana. It is among the state's infamy, worst rank to have. It is fifth as far as the states are concerned. And I'm telling you, look at the entire size of the state of Haryana, the population, and then compare this. In 2023, Haryana maintains its fifth position among the most rape cases, in fact, being registered. And it increases its lead from 5.7 contribution from 5.7% to 6%. 1,772 cases were registered. In 2024, although you would see overall number of cases to 1,391 coming down, the rank remains fifth, and 4.7% is Haryana's total share across the country. What is the message that you are sending at this moment to the women of Haryana, to the people, to the criminals in Haryana, those who think, they would also think that they can get away? But let me also tell you about the conviction as far as the rape cases are concerned. Between 2000, this is the Lok Sabha data coming from the Lok Sabha question. In 2018, while the conviction in overall in India was 27.2%, in Haryana it was 21.6%, 17th rank in terms of the conviction on rape cases. 2019, India 27.4%, Haryana falls down to 14.4%. And in 2020, while the conviction rate across country has gone up to 39.3%, in Haryana it remains to about 21.4%. The rank is 20th. Why would people in Haryana feel scared for committing any crime against women if there are examples like Gurmeet Ram Rahim, who can at will, after being convicted for double rape, get out whenever they want? And he's the supposed godman. I want to show you, move on to the other story, and I want to show you one of the most heartbreaking visuals that at least I have seen. And these visuals, these come from the national capital. It is a shame on all of us, especially, of course, the government. This is a man who had to jump inside a drain to search frantically for his son. His 15-year-old son was chasing a kite when he fell into a drain. For 4 days, the rescue work which was going on for Mithun, they could not find his body. This distraught father had to jump with a stick in his hand to try and find his son's body. There can't be anything more disturbing, more heartbreaking for anyone. A father frantically searching for the remains of his 15-year-old son, a city that allowed its young to in fact die and drown in a drain. Mithun's father, Avdesh Kumar, is joining me at this moment. After 4 days, the body has been found of this child. Avdesh ji, bahut bahut shukriya humse baat karne ke liye. Sabse pehle hamari samvedna aapke saath. Kisi bhi pita ke liye isse bade dukh ki koi baat nahi ho sakti jo aapke saath hua. Shabd shayad kam pad jaye. जो हमने विजुअल्स देखे सर, आप खुद नाली में आपको उतरना पड़ा और अपने बच्चे को आप ढूंढ रहे थे,
1: खुद नाली में थे।
0: क्या हुआ था उस दिन अवधेश के साथ और ये किस तरीके से, कैसे ये इस नाली में गिर गया?
1: ये नहीं पता सर, हम तो काम पे थे, ये नहीं पता कैसे गिर गया, नाले में गिर गया था ये।
0: आपको आपको कैसे पता चला और आप क्या काम करते हैं सर?
1: हम सर सीवर लाइन का काम करते हैं, सफाई का, प्राइवेट।
0: आपको कैसे पता चला अपने बेटे के बारे में?
1: हमें हमारे भतीजे ने फोन करके बताया था, जब तक हम आए थे उस टाइम तक हमारा बेटा लापता हो गया। शनिवार को 11 बजे गागा तक गिरा था इसमें, नाले में। फिर वो आज जाके मिला है, 8वीं क्लास में पढ़ता था हमारा बच्चा, 15 साल का सर।
0: जो आपको क्यों खुद
1: हमने भी ढूंढा था, हुआ हमें नहीं मिला, हमने कहा
0: आपको खुद नाले में क्यों उतरना पड़ा?
1: ये प्रशासन से हमने बोला था उस दिन, जिस दिन गिरा था हमने, कि यहाँ कोई मशीन मंगा के लगवा दो, हमारा बच्चा मिल जाएगा। इनने कोई कुछ नहीं सुनी। शनिवार को गिरा था इनने, संडे के इतवार के शाम को 6:30 बजे मशीन आई थी।
0: आपने लगातार उन्हें बोला कि मशीन लगाकर मलबा हटाकर आपके बच्चे को?
1: फिर सोमवार के लिए इनने, हाँ हमने इनसे बोला था, मगर इनने उतनी तेजी से काम नहीं करा जिस हिसाब से करना चाहिए, जिस हिसाब से करना चाहिए उस हिसाब से नहीं करा, उस हिसाब से करते तो आज 4 दिन नहीं लग जाते। हमारा बेटा जहाँ मिला था वहाँ हमने काफी ढूंढा था, हमने ढूंढा था जाके, जब किसी ने साल नहीं दिया उस टाइम पे तो सर हमने ढूंढा था जाके।
0: किसी भी पिता के लिए इससे बड़ा दुख की और कोई बात नहीं हो सकती, जिस तरीके से आपके बेटे के साथ हुआ, फिर आपको खुद उतरना पड़ा जब आप वहां।
1: हम खुद उतर गए थे, हमने तो वीडियो भी डाल रखी थी नाले में, उसमें हमें नहीं मिला, मगर हम जो थे वहां पे ढूंढ रहे थे, उससे थोड़ा सा आगे आज निकला, 20 मिनट में जीसीपी पहुंच गई, उसने 20 मिनट में वहां ढूंढ दिया। ये उसी शनिवार को ही हमें ऐसे ढूंढ देते तो हमारा बच्चा भाभी जी जिंदा मिलता, जिंदा मिल जाता। आज चौथे दिन मिला है हमारे लिए।
0: चौथे दिन मशीन लेकर आए ये लोग?
1: हाँ, आज चौथा दिन हो गया, शनिवार को गिरा था 11 बजे, आज 2 बजे मिला था।
0: मशीन लाने में 4 दिन लग गए, जब आप लगातार कहते रहे कि मशीन से ढूंढ दीजिए।
1: हाँ, मशीन इन्हें लाने में 2 दिन लग गए थे।
0: अवधेश जी,
2: मैं आपको थोड़ी तफ्तीश से बताऊं।
0: जी
2: सर, मेरा नाम बाबर खान है, मैं भीम आर्मी संगठन से हूँ। ये अवधेश भाई एक प्राइवेट सफाई कर्मचारी है जो कि लोकल एरिया में सफाई का काम करने का काम करते हैं। सैटरडे को ये वाकया हुआ, सैटरडे को पुलिस प्रशासन ने बहुत बर्बरता अपनाई यहाँ पर, सही तबियार SHO साहब ने सही ढंग तरीके से ना गाइड किया ना बात की। इन लोगों ने ये बोला कि अगर आप गोताखोरों को नहीं उतार रहे, अगर आप रेस्क्यू टीम को नहीं उतार, तो हमें तो हम उतर हम अपने बच्चों को ढूंढ लेंगे। मगर जिस जो बर्बरता अपनाई गई वो बहुत शर्मसार थी सर।
0: ठीक है अवधेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक मिनट सर, मैं अवधेश जी से एक मिनट ये समझना चाहता हूँ। अवधेश जी, सरकार ने एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है, आपको लगता है कि ये आपके बच्चे के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, उसके लिए किसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए सरकार को?
1: सर हमारा तो ये कहना है, 3 मांगे थी हमारी इनसे। अच्छा, पहली मांग हमारी ये थी हमारे बच्चे की बॉडी मिल जाए। दूसरी बात ये है कि ये नाले का कोई समाधान ऐसा हो जाए कि सर इसमें दोबारा कोई गलती ना हो, बच्चे गिर जाते हैं मिलते नहीं। ये हमारा पहला बच्चा है जो हमने इतना वो करा जो हमें मिल गया। और तीसरी बात ये सर, सरकार हमें क्या करना चाहती है हमारे साथ में, क्या नहीं करेगी वो आप लोग जानते।
0: आपको सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला, कुछ मुआवजे की बात हुई?
1: नहीं, हमें अभी तक कोई बात नहीं हुई सर। हमारा 15 साल का बेटा था, आप चला गया, क्या होता है भाई
2: सर? कल यहाँ पर
0: एक मिनट रुक जाइए।
1: कल सर LDM DM साहब आए, हमसे मिलके भी नहीं गए, कितना सोच की बात है।
0: अधिकारी वहां पर आए और आपसे मिले भी नहीं है?
2: नहीं,
1: हम दो आदमी हुए भी नहीं था कि
2: सर हमें ये यकीन था कि SDM साहब हमारे सामने आकर जांच देख कर गए हर चीज को, मगर परिवार की माँ और बाप मिथुन के फादर दोनों वहीं बैठे थे, उन्होंने जोखम नहीं उठाया।
0: सर आप एक बारी अवधेश जी को बात करने देंगे प्लीज? अवधेश जी, मैं बस आपसे, क्योंकि आप बहुत मुश्किल है आपके लिए, आपने अपना बेटा खोया है, सरकार इस वक्त अगर देख रही है, मुख्यमंत्री अगर इस वक्त रेखा गुप्ता देख रही है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप?
1: अब रेखा गुप्ता से हम क्या कहें, कैसी अपनी प्रशासन कौन से हिसाब का रख रखा है यहाँ पर। 4 दिन में आज आज किसी रईस का कुत्ता गिर जाता तो उसी दिन ये ढूंढ के दे देते। आज एक गरीब का बच्चा गिर गया, खुद मुझे उतरना पड़ा, मुझे नहीं मिला है। इनने आज चौथे दिन मेरे बच्चे की इतनी वो करी, तब जाके मेरा बच्चा मिला है वो भी। अब क्या मैं बताऊं रेखा गुप्ता जी को, किस क्या बताऊं, गरीब आदमी हो। वो बॉडी मिल गई, वही हमें बहुत है बाबू जी।
0: आपको क्या बॉडी सुपुर्द कर दी गई है अवधेश जी? अभी
1: हॉस्पिटल से आ रहे हैं वो भाई, छोटे छोटे गए थे साथ में, मैं भागा पीछे, आगे बोले कि तुम पापा तुम साथ में ऐसे बैठा लेके उसमें गाड़ी में, उसमें बेटे को मेरे को लेके गाड़ी गाड़ी के पीछे भगता ही रह गया साथ, वो चले गए, मेरे छोटे छोटे भाई बैठ गए तो वो चले गए थे साथ में।
0: अवधेश जी, शब्द नहीं है ये बताने के लिए जो आपके
1: ले जाना चाहिए
0: जी।
1: हाँ, मेरे माँ बाप जो है बहुत परेशान है, वो 4 दिन से माँ को तो बता ही नहीं, उसकी तबीयत बहुत खराब है, घर लेके जाना चाहता हूँ।
0: अवधेश जी, उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस वक्त आपकी बात सुन रही होगी, मदद के लिए सामने आएगी और कोशिश यही रहेगी कि इस तरीके से जो आपके साथ हुआ वो किसी पिता के साथ ना हो, वो किसी भी बच्चे के साथ ना हो। बहुत हमारी सांत्वना आपके साथ।
1: वो तो किसी रईस के ही साथ हो, ऐसा काम गरीब बेचारा क्या कर सकता है सर, क्या करेगा वो तो हाथ पाए पटकता है बैठ जाता है। तो हमारा तो हमने तो इतनी वो करी मेहनत, तो हमारा बच्चा मिल गया इसमें। जाने आए हमें 18 साल हो गई, यहाँ हर साल 2-4 बच्चे गिरी जाते हैं, लापता हो जाते हैं, मिलते ही नहीं बेचारे गरीब आदमियों के। इस नाले में ये नाले इस करीना का है, नहीं मिल पाते हैं, तो हमने ढूंढा लिया
0: जी। अवधेश जी, हमारी सांत्वना आपके साथ, भगवान आपके बेटे की आत्मा को शांति दे और आपको कम से कम उम्मीद यही रखेंगे कि सरकार की तरफ से मदद भी मिले। एंड दिस शुड सर्व एज अ लेसन फॉर द गवर्नमेंट, नो मोर मिथुन, यू कांट फेल द पीपल ऑफ दिस सिटी लाइक दिस। अ यंग बॉय ड्राउन इन दिस ड्रेन, हिज फादर हैड टू डेस्परेटली फाइंड जंप हिमसेल्फ टू फाइंड हिज बॉडी। And what he said, ladies and gentlemen, it's heartbreaking. It will stay, at least in my head, as he said that because he's a poor man, nobody cared for 4 days. It took them 4 days to even get the machines to try and find the body. If it would have been somebody else's, a rich person's dog, as per him, they would have found it much faster. Avdesh ji, bahut bahut shukriya humse baat karne ke liye. I just want to leave it there for all of us to think. We are failing as a society. We are failing as civilized people. We are failing on every front, whether it's the government or the administration, to give the basic infrastructure. 15-year-old Mithun has to pay the price for all that we see on paper, but nothing that comes to on our city on the ground. Quick break. I'm coming back. Stay tuned.

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा, सबका राजा आर्टियोर
2: मसाला। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
0: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
0: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cash back of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
0: It's the Mahi way.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्थर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: cuando está de
1: ser.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा
4: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली
4: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: हाउ?
4: मेक ऑल काइंड ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
2: इट्स द माही वे।
5: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
6: जानते हैं मैं Elite Matrimony क्यों recommend करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
7: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: ऑक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है ये।
3: कुछ इससे भी अनोखा
2: कमला पसंद सिर्फ एक एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
4: Across the country,
5: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: Invited ridicule from opposition parties across the board, from the Congress, RJD, to even the newly formed Cockroach Janata Party, who wondered whether this was the BJP's natural impulse when on the back foot, to counter allegations of sexism by dragging in religion.
1: Rahul Gandhi इस भूमि को समझ ही नहीं पाए हैं, जो संस्कृति संस्कार वो लिए हैं, इस धरती पर महिलाओं को समानता का अधिकार मिला है, उनको मनु स्मृति की किसी कहानी को किसी के द्वारा सुनी गई, लेकिन अपने सनातन संस्कृति को उन्होंने देखा क्यों नहीं?
2: जिस तरीके के नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के जो बयान हैं, वो जो परिलक्षित करते हैं कि हमेशा उन्होंने सनातन संस्कृति के विरोध में ही बोलने का काम किया है, और पता नहीं हिंदू दर्शन हिंदू धर्म से उनको क्यों इतनी चिढ़ है, क्योंकि स्वयं तो अब वो किसी धर्म से जुड़े नहीं हैं, तो इस कारण उनका इस तरीके का आचरण बिना पढ़े लिखे। एक पुरानी ग्रामीण कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए, आधा अधूरा ज्ञान लेकर के वो आलोचना करने का काम करते हैं।
3: राहुल गांधी कंटिन्यूसली ब्लेमिंग द हिंदू सोसाइटी in observing the various social customs, but the if he want to smash this patriarchy, but if he do so, why he is not telling anything against the other religious customs and traditions?
4: Rahul Gandhi ko Hindu granthon mein burai hi dikhai deti hai. कभी शरिया ट्रिपल तलाक हलाला के ऊपर उन्होंने खुल के बोला है? ये सिलेक्टिव फेमिनिज्म है, वोट बैंक के लिए हिंदू को गाली।
5: राहुल जी एक रिफॉर्मर, मुस्लिम समाज से भी रिफॉर्मर निकले तो सिखों में से भी रिफॉर्मर्स होने चाहिए, क्रिश्चियंस में रिफॉर्मर्स हुए तो सोसाइटी को रिफॉर्म कर रहे हैं। तो अब वही आदमी अपनी सोसाइटी के बारे में ज्यादा बोल सकता है जिस सोसाइटी को बिलोंग करता है। और इसलिए जो किरण रिजिजू जी का आरोप प्रत्यारोप है गलत है, बीजेपी का है जो गलत है।
6: दैट्स ऑल फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड वर्जन ऑफ क्वेश्चन इट बाय द किरण रिजिजू। व्हाई? बिकॉज कांग्रेस पार्टी इज ए पार्टी ऑफ सेक्युलर इन इन एंडीवर। So, apart from that, Congress party is filled with more than 75% to 80% Hindus only, and other communities are also there in the Congress party. So, Congress party believes in secularism, and Congress party believes in the endeavor of the secularism.
7: ये सब चीजें इस देश में नहीं चलेंगी। बहुत हो गया हिंदू मुसलमान। मेरे राज्य के एक मंत्री जी यही काम ही करते हैं, full time. और मैं तो डिमांड करता हूं कि प्रधानमंत्री जी अगर पोर्टफोलियो रीशफल में उनका विभाग बदले, उनके साथ कंपटीशन में हिमंतो जी पेट्रियार्की की बात करना, क्या यह गलत है? इस देश में क्या विमेन के एजेंसीज की बात ना हो?
8: किरण रिजिजू जी ने इसको एक पॉलिटिकल और रिलीजियस समस्या बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। इसमें ऐसा मेजोरिटी माइनॉरिटी फर्क कुछ नहीं है। पेट्रियार्की एक बुरा चीज है, एक बुरा समस्या है, इसको हटाना जरूरी है। कौन करेगा? सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी और एक मिनिस्टर इस किसी नहीं कर सकता। हर जगह में है, हर राज्यों में है, हर समाज में है।
0: Which brings us to the question, is the Congress's anti-patriarchy goonj selective and politically targeted, or is this the BJP's attempt to inject a communal angle to a simple feminist effort? Joining us on the debate, we have Radhika Khera from the BJP. Zeba Zuaria, advocate, is back on great public demand, because Zeba, you've clearly struck a chord over there. We've got Sanjay Jha, a political analyst, joining us with Ghanshyam Tiwari of the Samajwadi Party. But Radhika Khera, to you first, because the most commonsensical argument I've heard from most people in the Congress is, why is this creating so much heartburn for the BJP? All Rahul Gandhi said was smash patriarchy. He never said smash Hindu patriarchy or smash the BJP's patriarchy or smash, I don't know, saffronism's patriarchy. He just said smash patriarchy. It includes everything.
9: Vande Mataram to everyone. Padmaja, patriarchy simply means a social system that gives power and control to men rather than women. Now, patriarchy is not only there in the Manusmriti, it is there in every religion. Why is it from their attempt

0: cuando está de ser.
1: देश का टायर, जेके टायर।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्थोर मसाला।
5: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
5: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: हाउ?
5: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
2: इट्स द माही वे।

0: क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
4: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है।
5: कुछ इससे भी अनोखा
4: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्थोर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: cuando es
1: amanecer.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्थोर मसाला।
5: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
5: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: हाउ?
5: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
2: इट्स द माही वे।

रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।

0: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
1: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
2: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, जाने क्या क्या ना करता है, जब तक खुशबू

0: सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है। Across the
1: country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea.

0: क्या हो रहा है, हर जगह पर वोट राजनीति, हर चीज के लिए राजनीति।
1: फेथ और यूनिफॉर्म, व्हाट वुड यू चूज? एंड दिस इज अ डिबेट दैट हैज बीन रीइग्नाइटेड येट अगेन। This is after the Allahabad High Court has dismissed a petition seeking permission for a student to wear a headscarf along with the prescribed school uniform. The two-judge bench observed that the headscarf was not being worn by other students in the school, including girls from the same religious community. The court noted that except for the petitioner, no other girl was seen wearing a headscarf in the photographs placed before it. The ruling has now triggered a political debate. The BJP has backed the court's decision, questioning the need to wear religious attire in schools. The Samajwadi Party, however, has questioned the objection to wearing a hijab with a school uniform while saying it will abide by the court's decision.
2: देखिए, धर्म पे हमला नहीं है। शिक्षा में एक रूपता लाने के लिए विद्यालय में अगर एक रूपता रहती है तो ये समझ में आता है कि ये छात्र हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन इस्लाम का पहनावा अलग, हिंदू का पहनावा अलग हो तो देखने में लगता है कि यहाँ हिंदू मुसलमान होता है। तो जो टिप्पणी कोर्ट ने किया वो सही किया।
3: Certainly it seems to be following the reasoning. I've not seen the judgment of the Allahabad High Court, but essentially a secular school would have a, which is not running on religion, would have a uniform, and the focus is going to be on the academic curriculum and the secular curriculum, which has nothing to do with religion per se. Minorities, irrespective which are the minorities, whether it is Christians or Muslims or anyone else, is Sikhs, all our brothers sisters who are minorities, they are protected to have their own educational institutions under Article 26 of the Constitution. And hence, if a child or a family believes that an essential, what they consider is important for the child to be in a certain religious manner, then they can certainly study in those religious institutions which is constitutionally provided for and available. And there are schools which are run by very prominent Muslim charitable organizations. However, to argue and say that wearing a hijab is an essential practice, that I think may not be the correct position given the line of judgments by the Honorable Supreme Court.
4: यह मुद्दा क्यों उठता है? घूंघट पे सवाल, मैं हिजाब को घूंघट में बदल देना चाहता हूँ। इस देश की में परंपरा से घूंघट काटती हैं बच्चियां, महिलाएं, बहुएं, बहिनें, रिवाज है। तो यह रिवाज है और कोई अपना अपनी शनाख्त के तौर पर या उसको अच्छा लगता है और वो हिजाब पहनना चाहता है, सर पे वो ओढ़नी रखना चाहता है, सर पे पर्दा ढकना चाहता है, तो इसमें रोक नहीं होना चाहिए। उसकी इंडिविजुअल आज़ादी का सवाल है।
5: इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में जो फैसला आया है, सही बात है। शिक्षा में विद्यालय जाना, क्यों धार्मिक ड्रेस पहन के जाना, क्यों हिजाब पहन के जाना, इसीलिए एकदम सही फैसला है। और जो भी कोर्ट का न्यायालय का फैसला होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार उसको मानेगी, लागू करेगी, लेकिन फैसला एकदम सही है।
6: अगर कोई व्यक्ति अपनी आस्था के साथ हिजाब पहनता है तो उसको परेशानी नहीं। अगर ये परेशानी है तो आज से ये घोषित कीजिए कि कोई भी दूसरे धर्म का आदमी क्राइस्ट का वो एम्बलम नहीं पहनेगा, कोई कड़ा नहीं बांधेगा, कोई हाथ में कलावा नहीं बांधेगा, कोई अपने हाथ में त्रिशूल का वो नहीं पहनेगा, तो ये सब पे लागू कीजिए ना। या कोई सिख बच्चा जो है वो पगड़ी नहीं बांधेगा, या कोई सिख बच्चा कटार नहीं रखेगा। मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय को सभी को सर्वसंभाव के साथ बात करनी चाहिए। सिर्फ राज्य सरकारों को खुश करने के लिए अगर कोई चीजें हो रही है तो हम उसका विरोध करेंगे।
1: The Nashik Kumbh Mela spending has now triggered a debate over the government's priorities after a Supreme Court judge questioned the allocation of thousands of crores for the event. Justice Prasanna B has pointed out that the government is planning to spend around 32,000 to 34,000 crore rupees on Kumbh while highlighting the closure of Marathi medium schools in Maharashtra. The remarks have now been welcomed by the opposition. The opposition leaders have said that the Maharashtra state continues to face serious problems in education, including lack of teachers, school buildings, toilets, drinking water, and even proper access to roads. Meanwhile, the BJP has hit back at the opposition and said that the Congress leaders are anti-Sanatanis and that they are not liking Kumbh in Nashik.
7: खूप सकाळी निधी वेगवेगळ्या कामांसाठी देऊ, कुंभमेळ्यासाठी 32,000, उपमुख्यमंत्री म्हणाले 34,000 कोटी देऊ,

0: नंतर कुठेतरी बातमी वाचली की एका कॉरिडॉरसाठी आम्ही 11,000 कोटी रुपये खर्च करू. एवढे 1,000 कोटी रुपये जे शासन वेगवेगळ्या विकासांच्या कामासाठी खर्च करतं त्याच्याविषयी मला कुठलाही आक्षेप नाही. पण जर ह्या 1,000 कोटीच्या रकमेत जर साधन तरतूद करत असेल तर या रकमेपैकी मी असं म्हणालो की 0.1% 32 कोटी रुपये जर सरकारने खर्च केले तर या राज्यातल्या 100-125 शाळा मराठी शाळा ज्या बंद पडल्या त्या बंद पडल्या.
1: राज्य में बहुत सारे समस्या है, प्रॉब्लम है, शिक्षा की समस्या है, बहुत सारे स्कूल बंद पड़े हैं, स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो पीने की पानी की व्यवस्था है नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है तो शौचालय भी नहीं है, जाने के लिए ठीक से रास्ता भी नहीं है. हम बोलते थे कि कुंभ मेला की इतनी खर्चे के इतने पैसे की इतना उधल पट्टी की क्या जरूरत है तो हमें हिंदू विरोधी कहा जाता था. हमने कुंभ मेला को विरोध नहीं किया, वो कुंभ मेला करो आप, पर 35,000 करोड़ रुपए क्यों खर्चा करते हो ये हमारा कहना था. सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जज ने श्री प्रसन्ना जी वराडे जी ने आज वही कहा कि कुंभ मेला में 35,000 करोड़ रुपए खर्चा करने के लिए आपके पास है और 3,000 रुपए खर्चा शिक्षा पे खर्चा करने के लिए आपके पास में पैसे नहीं है.
2: सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने कहा कि आप कुंभ मेले के अंदर 34,000 करोड़ रुपया जो खर्चा कर रहे हो कॉरिडोर का, उसका अगर 1% भी आप एजुकेशन के ऊपर खर्चा करते तो काफी सारी स्कूलें बच जाती. उन्होंने मराठी स्कूलों का जिक्र किया, मैं कहूंगा उर्दू माध्यम की जो स्कूल है उनको भी बंद किया जा रहा है काफी जगहों के ऊपर, तो वो भी बच जाती. तो इतने बड़े न्यायाधीश ने कहा, अगर कहा है तो बहुत बड़ी बात है.
3: महाराष्ट्र की भूमि पर देवाभव के नेतृत्व में एजुकेशन पर हम पहले की सरकार से 5 गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं और हमारी मंशा है कि और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पर हम खर्च कर सकें. पर महाकुंभ के इस महान पर्व पर श्रद्धा और आस्था का वहां पर सैलाब उमड़ेगा, लाखों करोड़ों लोग आएंगे, वहां पर सड़कों का निर्माण हो रहा है, डेवलपमेंट के इंफ्रा के काम हो रहे हैं. सारे कांग्रेस नेता कान खोल करके ध्यान से सुने, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर महाकुंभ होगा और यदि इसे कोई विरोध करता है तो आने वाले चुनाव में जनेऊ पहनने का कांग्रेस का नाटक या हिंदू मंदिरों में जाने की नौटंकी सनातन हिंदू भाई नहीं सहन करेगा.
4: एंड नाउ ऑन टू द इश्यू ऑफ फूड सेफ्टी. Two worm related food and safety incidents involving Paul Bakery have surfaced in 2 days. First one was in Gurugram and then in Pune. In Gurugram, a dinner reportedly discovered a live worm crawling through a sandwich after eating almost half of it. A video of the incident went viral and the restaurant has since apologized. Now in Pune, a customer has alleged finding a worm in takeaway food purchased from Paul Bakery at Phoenix Market City in Viman Nagar on August of 24th. A customer posted the video online, raising questions over the food hygiene and quality. The bakery administration is yet to issue an official response regarding the same. And meanwhile, while all of this is happening, a shocking scramble for chocolates in Kanpur had surfaced. But these were not chocolates being distributed. They were allegedly expired products dumped as garbage. A viral video from the Panki industrial area show people rushing to collect the boxes of chocolates and toffees, filling bags and sacks with them. The person who shot the video claims the products had been discarded by a factory owner after being declared unfit for scale. He later checked the packaging and found that some chocolates had reportedly expired as far as back in 2024. With that, it's time for us to slip into a very quick break. Don't go anywhere. News and update continue.
5: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
6: Food is music. Synchrony of so many elements. I am a conductor of chaos. Chef Gagaranand at NDTV, Walk the Talk.
5: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: the photographs placed before it. The ruling has now triggered a political debate. The BJP has backed the court's decision, questioning the need to wear religious attire in schools. The Samajwadi Party, however, has questioned the objection to wearing a hijab with a school uniform while saying it will abide by the court's decision.
1: देखिए धर्म पे हमला नहीं है. शिक्षा में एक रूपता लाने के लिए विद्यालय में अगर एक रूपता रहती है तो ये समझ में आता है कि ये छात्र हैं. यहाँ कोई भेदभाव नहीं है. लेकिन इस्लाम का पहनावा अलग, हिंदू का पहनावा अलग हो तो देखने में लगता है कि यहाँ हिंदू मुसलमान होता है. तो जो टिप्पणी कोर्ट ने किया वो सही किया.
2: Certainly it seems to be following the reasoning. I've not seen the judgment of the Allahabad High Court. But essentially, a secular school would have which is not running on religion, would have a uniform, and the focus is going to be on the academic curriculum and the secular curriculum, which has nothing to do with religion per se. Minorities, irrespective which are the minorities, whether it is Christians or Muslims or anyone else, is Sikhs, all our brothers, sisters who are minorities, they are protected to have their own educational institutions under Article 26 of the Constitution. And hence, if a child or a family believes that an essential, what they consider is important for the child to be in a certain religious manner, then they can certainly study in those religious institutions which is constitutionally provided for and available. And there are schools which are run by very prominent Muslim charitable organizations. However, to argue and say that wearing a hijab is an essential practice, that I think may not be the correct position given the line of judgments by the Honorable Supreme Court.
3: यह मुद्दा क्यों उठता है? घूंघट पे सवाल. मैं हिजाब को घूंघट में बदल देना चाहता हूँ. इस देश की में परंपरा से घूंघट काटती हैं बच्चियां, महिलाएं, बहुएं, बहिनें, रिवाज है. तो यह रिवाज है और कोई अपना अपनी शनाख्त के तौर पर या उसको अच्छा लगता है और वो हिजाब पहनना चाहता है, सर पे वो ओढ़नी रखना चाहता है, सर पे पर्दा ढकना चाहता है, तो इसमें रोक नहीं होना चाहिए. उसकी इंडिविजुअल आज़ादी का सवाल है.
4: इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में जो फैसला आया है, सही बात है. शिक्षा में विद्यालय जाना, क्यों धार्मिक ड्रेस पहन के जाना, क्यों हिजाब पहन के जाना, इसीलिए एकदम सही फैसला है. और जो भी कोर्ट का न्यायालय का फैसला होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार उसको मानेगी, लागू करेगी. लेकिन फैसला एकदम सही है.
5: अगर कोई व्यक्ति अपनी आस्था के साथ हिजाब पहनता है तो उसको परेशानी नहीं. अगर ये परेशानी है तो आज से ये घोषित कीजिए कि कोई भी दूसरे धर्म का आदमी क्राइस्ट का वो एम्बलम नहीं पहनेगा, कोई कड़ा नहीं बांधेगा, कोई हाथ में कलावा नहीं बांधेगा, कोई अपने हाथ में त्रिशूल का वो नहीं पहनेगा, तो ये सब पे लागू कीजिए ना. या कोई सिख बच्चा जो है वो पगड़ी नहीं बांधेगा, या कोई सिख बच्चा कटार नहीं रखेगा. मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय को सभी को सर्वसंभाव के साथ बात करनी चाहिए. सिर्फ राज्य सरकारों को खुश करने के लिए अगर कोई चीजें हो रही है तो हम उसका विरोध करेंगे.
0: The Nashik Kumbh Mela spending has now triggered a debate over the government's priorities after a Supreme Court judge questioned the allocation of thousands of crores for the event. Justice Prasanna B has pointed out that the government is planning to spend around 32,000 to 34,000 crore rupees on Kumbh while highlighting the closure of Marathi medium schools in Maharashtra. The remarks have now been welcomed by the opposition. The opposition leaders have said that the Maharashtra state continues to face serious problems in education, including lack of teachers, school buildings, toilets, drinking water and even proper access to roads. Meanwhile, the BJP has hit back at the opposition and said that the Congress leaders are anti-Sanatanis and that they are not liking Kumbh in Nashik.
6: खूप सकाळी निधी वेगवेगळ्या कामांसाठी देऊ. कुंभमेळ्यासाठी 32,000, उपमुख्यमंत्री म्हणाले, मुख्यमंत्री म्हणाले 34,000 कोटी देऊ. नंतर कुठेतरी बातमी वाचली की एका कॉरिडॉरसाठी आम्ही 11,000 कोटी रुपये खर्च करू. एवढे 1,000 कोटी रुपये जे शासन वेगवेगळ्या विकासांच्या कामासाठी खर्च करतं त्याच्याविषयी मला कुठलाही आक्षेप नाही. पण जर ह्या 1,000 कोटीच्या रकमेत जे साधन तरतूद करत असेल

0: तर या रकमेपैकी मी असं म्हणालो की 0.1% 32 कोटी रुपये जर सरकारने खर्च केले तर या राज्यातल्या 100-125 शाळा मराठी शाळा ज्या बंद पडल्या त्या बंद पडल्या नाही।
1: राज्य में बहुत सारे समस्या है, प्रॉब्लम है, शिक्षा की समस्या है, बहुत सारे स्कूल बंद पड़े हैं, स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो पीने की पानी की व्यवस्था है नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है तो शौचालय भी नहीं है, जाने के लिए ठीक से रास्ता भी नहीं है। हम बोलते थे कि कुंभ मेला की इतनी खर्चे के इतने पैसे की इतना उधल पट्टी की क्या जरूरत है, तो हमें हिंदू विरोधी कहा जाता था। हमने कुंभ मेला को विरोध नहीं किया, वो कुंभ मेला करो आप, पर 35,000 करोड़ रुपए क्यों खर्चा करते हो, ये हमारा कहना था। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने, जज ने, श्री प्रसन्ना जी वराड़े जी ने आज वही कहा कि कुंभ मेला में 35,000 करोड़ रुपए खर्चा करने के लिए आपके पास है और 3,000 रुपए खर्चा कर शिक्षा पे खर्चा करने के लिए आपके पास में पैसे नहीं है।
2: सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने कहा कि आप कुंभ मेले के अंदर 34,000 करोड़ रुपया जो खर्चा कर रहे हो कॉरिडोर का, उसका अगर 1% भी आप एजुकेशन के ऊपर खर्चा करते तो काफी सारी स्कूलें बच जाती। उन्होंने मराठी स्कूलों का जिक्र किया, मैं कहूंगा उर्दू माध्यम की जो स्कूल है उनको भी बंद किया जा रहा है काफी जगहों के ऊपर, तो वो भी बच जाती। तो इतने बड़े न्यायाधीश ने कहा, अगर कहा है तो बहुत बड़ी बात है।
3: महाराष्ट्र की भूमि पर देवाभव के नेतृत्व में एजुकेशन पर हम पहले की सरकार से 5 गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं और हमारी मंशा है कि और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पर हम खर्च कर सकें। पर महाकुंभ के इस महान पर्व पर श्रद्धा और आस्था का वहां पर सैलाब उमड़ेगा, लाखों करोड़ों लोग आएंगे, वहां पर सड़कों का निर्माण हो रहा है, डेवलपमेंट के इंफ्रा के काम हो रहे हैं। सारे कांग्रेस नेता कान खोल करके ध्यान से सुने, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर महाकुंभ होगा और यदि इसे कोई विरोध करता है तो आने वाले चुनाव में जनेऊ पहनने का कांग्रेस का नाटक या हिंदू मंदिरों में जाने की नौटंकी सनातन हिंदू भाई नहीं सहन करेगा।
4: एंड नाउ ऑन टू द इश्यू ऑफ फूड सेफ्टी। Two worm related food and safety incidents involving Paul Bakery have surfaced in 2 days. First one was in Gurugram and then in Pune. In Gurugram, a dinner reportedly discovered a live worm crawling through a sandwich after eating almost half of it. A video of the incident went viral and the restaurant has since apologized. Now in Pune, a customer has alleged finding a worm in takeaway food purchased from Paul Bakery at Phoenix Market City in Viman Nagar on August of 24th. A customer posted the video online, raising questions over the food hygiene and quality. The bakery administration is yet to issue an official response regarding the same. And meanwhile, while all of this is happening, a shocking scramble for chocolates in Kanpur had surfaced, but these were not chocolates being distributed. They were allegedly expired products dumped as garbage. A viral video from the Panki industrial area show people rushing to collect the boxes of chocolates and toffees, filling bags and sacks with them. The person who shot the video claims the products had been discarded by a factory owner after being declared unfit for scale. He later checked the packaging and found that some chocolates had reportedly expired as far as back in 2024. With that, it's time for us to slip in a very quick break. Don't go anywhere. News and update continue.

0: it has now spilled onto the political forum as well. The Kangana Ranaut versus Kriti Sanon Rao over her outfit in an advertisement has set around Raksha Bandhan is just refusing to dial down. In the latest, the leader of opposition Rahul Gandhi has reacted on the controversy backing actor Kriti Sanon. Reacting to Kriti Sanon's Instagram story, Rahul Gandhi wrote, and I quote him, "What a woman wears, what she does and where she goes is her choice, and that people need to stop trolling women for exercising their freedom." Rahul's remarks came after Kangana had earlier given out remarks on Kriti Sanon, saying why would she tie Rakhi to her brother in a bikini and undergarments. Now, to which Kriti Sanon had then replied, and I quote, "When will we stop telling women what to wear?" In news that has created anger and outrage, convicted rapist Gurmeet Ram Rahim is out of jail once again, this time on a 21-day temporary release, marking his 17th release since the year 2017 conviction. This once again has put the spotlight on VIPs and special treatment. The Dera Sacha Sauda chief has left Sunera jail in Rohtak and arrived at Dera headquarters in Sirsa, where he will stay during the release period. This is his third consecutive visit to the Sirsa Dera. Ram Rahim is serving a 20-year sentence for raping two women disciples. His repeated parole and furlough has released have given a reminder to everybody that he has been given a special treatment, and it has now become a subject of scrutiny. Akal Takht has criticized the government and said that this is government double standards by granting numerous parole to Ram Rahim but not releasing the Sikh prisoners. Congress has also slammed the BJP over his latest release and called the BJP rapist friendly and anti-women.
1: Well, I'm sure Mr. Hemanta Biswa Sarma is concerned about the dignity and safety of women across the country, which he should be. And I hope he will speak to his counterpart in Haryana and get the parole of Guru Ram Rahim cancelled, because he should be concerned about women across the country.
2: कोई पहली बार तो हुआ नहीं ये काम होता आ रहा है तो किसी को ये तो आदरणीय न्यायालय ने देखना है और कैसे मेरे को तो इस बात की कोई आपत्ति नहीं किसी को देना नहीं देना क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे मन के भाव कुछ और हो सकते हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है देश के अंदर क्या चल रहा है वो आप सब जानते हैं सब जानते हैं कि देश में क्योंकि कुछ चीजों के खिलाफ हम टिप्पा टिप्पणी संविधान के मुताबिक नहीं कर सकते लेकिन देश में क्या चल रहा है आप सबको पता है देश में क्या हो रहा है हर जगह पर वोट राजनीति हर चीज के लिए राजनीति
0: फेथ और यूनिफॉर्म व्हाट वुड यू चूज एंड दिस इज अ डिबेट दैट हैज बीन रीइग्नाइटेड येट अगेन. This is after the Allahabad High Court has dismissed a petition seeking permission for a student to wear a headscarf along with the prescribed school uniform. The two-judge bench observed that the headscarf was not being worn by other students in the school, including girls from the same religious community. The court noted that except for the petitioner, no other girl was seen wearing a headscarf in the photographs placed before it. The ruling has now triggered a political debate. The BJP has backed the court's decision, questioning the need to wear religious attire in schools. The Samajwadi Party, however, has questioned the objection to wearing a hijab with a school uniform while saying it will abide by the court's decision.
3: देखिए धर्म पे हमला नहीं है शिक्षा में एक रूपता लाने के लिए विद्यालय में अगर एक रूपता रहती है तो ये समझ में आता है कि ये छात्र हैं यहाँ कोई भेदभाव नहीं है लेकिन इस्लाम का पहनावा अलग हिंदू का पहनावा अलग हो तो देखने में लगता है कि यहाँ हिंदू मुसलमान होता है तो जो टिप्पणी कोर्ट ने किया वो सही किया
4: Certainly it seems to be following the reasoning. I've not seen the judgment of the Allahabad High Court. But essentially, a secular school would have a, which is not running on religion, would have a uniform and the focus is going to be on the academic curriculum and the secular curriculum which has nothing to do with religion per se. Minorities, irrespective which are the minorities, whether it is Christians or Muslims or anyone else is Sikhs, all our brothers sisters who are minorities, they are protected to have their own educational institutions under Article 26. of the Constitution. And hence, if a child or a family believes that an essential, what they consider is important for the child to be in a certain religious manner, then they can certainly study in those religious institutions which is constitutionally provided for and available. And there are schools which are run by very prominent Muslim charitable organizations. However, to argue and say that wearing a hijab is an essential practice, that I think may not be the correct position given the line of judgments by the Honorable Supreme Court.
5: यह मुद्दा क्यों उठता है? घूंघट पे सवाल, मैं हिजाब को घूंघट में बदल देना चाहता हूं। इस देश की में परंपरा से घूंघट काटती हैं बच्चियां, महिलाएं, बहुएं, बहिनें, रिवाज है। तो यह रिवाज है और कोई अपना अपनी शनाख्त के तौर पर या उसको अच्छा लगता है और वो हिजाब पहनना चाहता है, सर पे वो ओढ़नी रखना चाहता है, सर पे पर्दा ढकना चाहता है, तो इसमें रोक नहीं होना चाहिए। उसकी इंडिविजुअल आज़ादी का सवाल है।
6: इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में जो फैसला आया है, सही बात है। शिक्षा में विद्यालय जाना, क्यों धार्मिक ड्रेस पहन के जाना, क्यों हिजाब पहन के जाना, इसीलिए एकदम सही फैसला है। और जो भी कोर्ट का न्यायालय का फैसला होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार उसको मानेगी, लागू करेगी, लेकिन फैसला एकदम सही है।
7: अगर कोई व्यक्ति अपनी आस्था के साथ हिजाब पहनता है तो उसको परेशानी नहीं। अगर ये परेशानी है तो आज से ये घोषित कीजिए कि कोई भी दूसरे धर्म का आदमी क्राइस्ट का वो एम्बलम नहीं पहनेगा, कोई कड़ा नहीं बांधेगा, कोई हाथ में कलावा नहीं बांधेगा, कोई अपने हाथ में त्रिशूल का वो नहीं पहनेगा, तो ये सब पे लागू कीजिए ना। या कोई सिख बच्चा जो है वो पगड़ी नहीं बांधेगा, या कोई सिख बच्चा कटार नहीं रखेगा। मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय को सभी को सर्वसंभाव के साथ बात करनी चाहिए। सिर्फ राज्य सरकारों को खुश करने के लिए अगर कोई चीजें हो रही है तो हम उसका विरोध करेंगे।
0: The Nashik Kumbh Mela spending has now triggered a debate over the government's priorities after a Supreme Court judge questioned the allocation of thousands of crores for the event. Justice Prasanna B has pointed out that the government is planning to spend around 32,000 to 34,000 crore rupees on Kumbh while highlighting the closure of Marathi medium schools in Maharashtra. The remarks have now been welcomed by the opposition. The opposition leaders have said that the Maharashtra state continues to face serious problems in education, including lack of teachers, school buildings, toilets, drinking water, and even proper access to roads. Meanwhile, the BJP has hit back at the opposition and said that the Congress leaders are anti-Sanatanis and that they are not liking Kumbh in Nashik.
8: खूप सकाळी निधी वेगवेगळ्या कामांसाठी देऊ, कुंभमेळ्यासाठी 32,000, उपमुख्यमंत्री म्हणाले, मुख्यमंत्री म्हणाले 34,000 कोटी देऊ, नंतर कुठेतरी बातमी वाचली की एका कॉरिडॉरसाठी आम्ही 11,000 कोटी रुपये खर्च करू, एवढे हजार कोटी रुपये जे शासन वेगवेगळ्या विकासांच्या कामासाठी खर्च करतं त्याच्याविषयी मला कुठलाही आक्षेप नाही। पण जर ह्या हजारो कोटीच्या रकमेत जर साधन तरतूद करत असेल तर या रकमेपैकी मी असं म्हणालो की 0.1% 32 कोटी रुपये जर सरकारने खर्च केले तर या राज्यातल्या 100-125 शाळा, मराठी शाळा ज्या बंद पडल्या त्या बंद पडल्या।
9: राज्य में बहुत सारे समस्या है, प्रॉब्लम है, शिक्षा की समस्या है, बहुत सारे स्कूल बंद पड़े हैं, स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो पीने की पानी की व्यवस्था है नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है तो शौचा भी नहीं है, जाने के लिए ठीक से रास्ता भी नहीं है। हम बोलते थे कि कुंभ मेला की इतनी खर्चे के इतने पैसे की, इतना उधल पट्टी की क्या जरूरत है, तो हमें हिंदू विरोधी कहा जाता था। हमने कुंभ मेला को विरोध नहीं किया, वो कुंभ मेला करो, आप पर 35,000 करोड़ रूपये क्यों खर्चा करते हो, यह हमारा कहना था। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने, जज ने, श्री प्रसन्ना जी वराड़े जी ने आज वही कहा कि कुंभ मेला में 35,000 करोड़ रुपए खर्चा करने के लिए आपके पास है और 3,000 रुपए खर्चा शिक्षा पे खर्चा करने के लिए आपके पास में पैसे नहीं है।
10: सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने कहा कि आप कुंभ मेले के अंदर 34,000 करोड़ रुपया जो खर्चा कर रहे हो कॉरिडोर का, उसका अगर 1% भी आप एजुकेशन के ऊपर खर्चा करते तो काफी सारी स्कूलें बच जाती। उन्होंने मराठी स्कूलों का जिक्र किया, मैं कहूंगा उर्दू माध्यम की जो स्कूल है उनको भी बंद किया जा रहा है काफी जगहों के ऊपर, तो वो भी बच जाती। तो इतने बड़े न्यायाधीश ने कहा, अगर कहा है तो बहुत बड़ी बात है।
11: महाराष्ट्र की भूमि पर देवा भाव के नेतृत्व में एजुकेशन पर हम पहले की सरकार से 5 गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं और हमारी मंशा है कि और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पर हम खर्च कर सकें। पर महाकुंभ के इस महान पर्व पर श्रद्धा और आस्था का वहां पर सैलाब उमड़ेगा, लाखों करोड़ों लोग आएंगे, वहां पर सड़कों का निर्माण हो रहा है, डेवलपमेंट के इंफ्रा के काम हो रहे हैं। सारे कांग्रेस नेता कान खोल करके ध्यान से सुने, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर महाकुंभ होगा और यदि इसे कोई विरोध करता है तो आने वाले चुनाव में जनेऊ पहनने का कांग्रेस का नाटक या हिंदू मंदिरों में जाने की नौटंकी सनातन हिंदू भाई नहीं सहन करेगा।
0: एंड नाउ ऑन टू द इश्यू ऑफ फूड सेफ्टी। Two worm related food and safety incidents involving Paul Bakery have surfaced in 2 days. First one was in Gurugram and then in Pune. In Gurugram, a diner reportedly discovered a live worm crawling through a sandwich after eating almost half of it. A video of the incident went viral and the restaurant has since apologized. Now in Pune, a customer has alleged finding a worm in takeaway food purchased from Paul Bakery at Phoenix Market City in Viman Nagar on August of 24th. A customer posted the video online, raising questions over the food hygiene and quality. The bakery administration is yet to issue an official response regarding the same. And meanwhile, while all of this is happening, a shocking scramble for chocolates in Kanpur had surfaced. But these were not chocolates being distributed. They were allegedly expired products dumped as garbage. A viral video from the Panki industrial area show people rushing to collect the boxes of chocolates and toffees, filling bags and sacks with them. The person who shot the video claims the products had been discarded by a factory owner after being declared unfit for scale. He later checked the packaging and found that some chocolates had reportedly expired as far as back in 2024. With that, it's time for us to slip in a very quick break. Don't go anywhere. News and update continue.
12: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
13: Food is music. Synchrony of so many elements. I am a conductor of chaos. Chef Gagaranand at NDTV, Bong the Talk.
12: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.